नहीं, कोई रस नहीं, केवल दुख, इकला दुख। परमात्मा का विछोड़ा इस तरह का विछोड़ा है, इथों दुख भी मिलता है ते इथों एक रस भी मिलता है। दुख मिलता है बहुत वड्डा, रस मिलता है बहुत वड्डा, दोवें चीजां इकट्ठियां मिलदियां ने। रस परमात्मा नालों टुटन नहीं देंदा, दुख एहसास बनाई रखता है कि परमात्मा नूं मिलन दा यतन प्रयतन होर कर, जोरदार कर, मंग कर, अरदासां दे विच लगा रह, साधना दे दौर विचों गुजरदा रह। मेहनत मुशक्कत करन वास्ते दुख प्रेरणा करता है, जुड़े रहन वास्ते विचकार जो काम करता है वह मिलिया हुआ रस काम करता है। परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस मिलता है ते नाल दुख मिलता है। विछोड़े विचों मिलता दुख है, परमात्मा दे विछोड़े विचों अकै रस भी मिलता है। यही कारण है कि भगत फरीद साहब जी कहन लगे, वाण दुख चिंता नूं मैं मंजा बना लिया है, ही हां सेरू बना लिया है, पावे बना लिया है, ते वाण फिर उस मंजे नूं बुनना भी ते है, वाण भी ते चाहिदा है, ते फिर वाण बना लिया है। परमात्मा जो तेरे ते मेरे विछोड़े विचों दुख मिल रहा है उन्हूं मैं वाण बना लिया है। चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेप। हुण मंजी ते तैयार हो गई, मंजी दे पावे चाहिदे ने। भगत जी ने चिंता नूं पाव्यां दी जगह दे उत्ते वरत लिया, मंजी दीआं हीआं सेरू चाहिदे ने। ते भगत जी कहन लगे, मैं चिंता नूं इस जगह दे उत्ते वरत लिया, मंजी मुकम्मल होवे वाण चाहिदा है। कहन लगे, मैं दुख नूं वाण जान लिया, मंजी मुकम्मल हो गई, पर इस मंजी दे उत्ते फिर बिस्तर भी ते चाहिदा है, विछाउणा भी ते चाहिदा है। कहन लगे, बिरहा विशावन लेप, हे निरंकार तेरा वैराग तेरा बिरहा उन्हूं मैं उपर लैण वास्ते लेप रजाई बनाया, उन्हूं ही मैं हेठां विछाउण वास्ते तलाई बनाया है। विशावन लेप, विछाया मैं बिरहे नूं, उपर लियाए मैं बिरहा। दिन पर रात मेरे जीवन दे अंदर बिरह ही बिरहा रहिंदा है। कहन लगे, ए मेरा जीवन है, बिरह विशावन लेप एहो हमारा जीवना, तो साहिब सच्चे वेग। हे मेरे साहिब, हे मेरे निरंकार, मेरे जीवन दी चाल इस तरह दी है जो मैं तेरे सामने बयान कर रहा। कदी रुक करके मेरे वल वेखता सही कि तेरे नाल प्यार करन वाला वैरागी हिरदा किस तरह जीवन गुजारदा है। वैराग में हिरदे वाले मनुख दे पास तन दौलत पदार्थ बहुत सारे होन, पर उन्हों इन्हां दे नाल लगाव नहीं रहिंदा, अगे चला जांदा। निरंकार तू मिले तां गल बनदी है, तेरे तो बगैर नहीं। इस तरह दे मनुख नूं कोई दूसरा मनुख जमीन जायदाद मिलखो मिकदारी देवे, कोई लालच देवे तेनूं इह कुछ मिलेगा, छड परमात्मा दे राह नूं की लैणा चल के, नहीं मिलदा ना सही। किहड़ा सारी दुनिया ने रब नूं पा लिया पर उह रुकदा नहीं है। वैराग मन दे अंदर इक्को ही है, यतन प्रयतन इक्को ही है, अरदास मन दे अंदर इक्को ही है। हुण उह साधना दे दौर विचों दी निकलण दा यतन कर रिहा है, ते उम्मीद अरदास एक ही करदा है, निरंकार तू मिले तां मेरे मन दा चैन, मेरे मन दी शांति, तू ना मिले ते फिर मेरा जीवना कादा जीवना होया। एक सच्ची सुहागण दी अरदास इस तरह दी, सच्चे जग्यासू दा जीवन इस तरह दा ही है। एहो हमारा जीवना, मेरा जीवना चिंता दे अंदर, मेरा जीवना दुख दे अंदर, मेरा जीवना अधूरा जिहा, ते परमात्मा कदा जीवना है। तेरे तो विछड़ के जीवना भी कोई जीवना है, तू मेरी अरदास सुन ते मैनू मिल, इस तरह वह बेनतियां करदा होया नजर पैंदा है। शेखशादी साहब जी ने रब दे प्यारियां दीयां नौ निशानियां बयान कीतियां ने, नौ निशानियां। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਲਾ। ਭੈਣਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰਦਾ। ਜ਼ਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚੌਲ। ਜ਼ਰਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਰਾਗ ਮੇ ਹਿਰਦਾ
ਛੇਕ

बेहोश बंदे दी कोई लोड़ नहीं हुंदी। बेहोश दी की लोड़ है, उहदे उत्ते कपड़ा दिओ ना दिओ, उहनू कपड़ा मैला दिओ, उहनू कपड़ा साफ सुथरा दिओ, बेहोश दी समझ तो बाहर कपड़ा जिवें दा दिओगे उहनू परवान है, कोई उहदी अपील दलील नहीं है, क्योंकि बेहोशी है। बेहोशी दे अंदर उस मनुख नू लम्मे चौड़े भोजन पानी दी लोड़ नहीं पैंदी, मोटर कार दी लोड़ नहीं पैंदी, तरह तरह दी रंग रौनक दुनिया दी बहार दी लोड़ बेहोश वास्ते बेअर्थ है, बेमैनी है। होश विच आया बंदा, जागया बंदा सब कुछ तो लाभ ले लैंदा है, ते बेहोश बंदा किसे भी जगह ते जाके किसे पदार्थ कोलों लाभ लेना मुश्किल बन जांदा है, नहीं ले सकदा, नहीं लाभ मिलेगा क्योंकि बेहोश है। अगर जाके गुरुद्वारे आओ, मन नू जगाउण दा यतन करो, कथा थोड़ी सुनोगे लाभ ज्यादा मिल जाएगा, कीर्तन थोड़ा भी सुन लोगे लाभ ज्यादा मिल जाएगा। बेहोशी दे अंदर आना, बेहोशी दे अंदर उठ के चले जाना, पूरा पर भी लाभ नहीं मिलता, खिमा मंगलवा बोल कुछ कौड़े ने, कुछ भी लाभ नहीं मिलता। लगातार 20-20 साल तो बंदे आ रहे ने, पर जीवन दे अंदर पूरा पर भी फर्क नहीं है, रिंचक मात्र भी फर्क नहीं है। मैं अपने ते गल भी करा, 20-20 साल तो कथा करदे ने लोग, कीर्तन करदे ने, जीवन दे अंदर कोई फर्क नहीं है, सुनदे ने कोई फर्क नहीं है, सेवा करदे ने कोई फर्क नहीं है। कारण की है, एक ते मनोरथ दी समझ नहीं है, ते दूजा जो कर रहे ने बेहोशी विच कर रहे ने। बेहोश बंदा बोलदा है, बरड़ाउंदा है, होश विच आवे उहनू कहो कि तू ए बोलदा सै, ओ कहिंदा मैनू नहीं पता मैं बोलदा सां, मैनू समझ नहीं कि मैं की बोलदा सां। बेहोशी दे अंदर आ बोल रहे हो, कर रहे हो, आ रहे हो, कमा रहे हो, इहदा लाभ हुंदा तां ही नजर नहीं पै रहा। थोड़ा करो पर होश विच करो। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकागर चीत। थोड़ा कर लो पर होश दे नाल करो, तां कि रस बन जाए। तो मैं अर्जे कर रहा सां, भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, अपना पजस पजस का पाई, आवे अंत ना पजया जाए। सोदर रह राज साहब जी दी पाक बाणी दे अंदर आप रोज रोज एक शब्द पढ़ के अगे निकल जांदे हो, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, ए मनुखा दी मिली प्राप्त हुई, क्यों गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, परमेश्वर नू मिलन वास्ते, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। इसे शब्द दे अंदर अगे आके मैं शर्तन बेनती करदा चला, पातशाह कहिंदे ने सरंजाम लाग अवजल तरन कह। सरंजाम दा अखरी अर्थ हुंदा है इंतजाम करना, प्रबंध करना। सरंजाम लाग इंतजाम कर, प्रबंध कर। पातशाह किस तरह दा प्रबंध? पवजल तरन कै, ताकि पवजल नू तर जाए। ते पवजल कोई स्पेस दे अंदर वगदा होया सतलुज दरिया वर्गा दरिया नहीं है, इथे ही है। आ जिहड़ा दुखां दा सागर जिहड़ा सानू झेलना पै रहा है, जिथे असीं डुब रहे हां, हौके ने, चोरे ने, कले कलेश है, चिंतावां ने, इहदा नाम पवजल है। आख्या सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म ब्रिथा जात रंग माया कै। जन्म जात रहा है पर जा रहा है, पाशा कहन लगे बिरथा, पाशा बिरथा क्यों? रंग माया कै। उधर फरीद साहब कहन लगे जा रहा है जन्म, जा रहियां ने जन्म दे रातां ते जन्म दे दिन, पर किवें जा रहे ने? चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तो आहो केरे कम। भगत जी कहन लगे एक दिन लेखा भी देना पैना, हिसाब भी देना पैना, तू की कम लेके आया सै, की तेरी जिम्मेवारी फरज सी, ओनू तू बाखूबी ढंग दे नाल नभाया जां नहीं नभाया। असी अपनी जिम्मेवारी तो किनारा काशी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साडा मन भीड़ तो प्रभावित है। बहुत सारे लोग जद गुनाह करदे ने ते असी भीड़ तो प्रभावित होके उसे राह ते तुर पैने आ। जद इतने सारे लोग इस राह ते जा रहे ने, तो मैं दूसरे राह दे उते क्यों चला, दूसरे राह दे उते क्यों जावा? कि ये सारे लोग नरक दे भागे ने, सारे लोग वार वार दुखी होणगे। लोगों तो मन प्रभावित

जप आद सच जोगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हार तारिया सिखी अतः संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

जे ओ उड़ारी मारेगा भी ते परत के फिर पिंजरे विच आ जाएगा। ओ लोग इन्ना कु गुलाम रह चुके ने, कई सदियां दे गुलाम ने, ते जे मेरा कलगी वाला उन्हां दी गुलामी दा पिंजरा तोड़ना चाहंदा है, हालांकि पंछी नू एनी समझ नहीं, जेड़ा पिंजरे नू तोड़दा पिया साडा भला करदा पिया, सानू खुली हवा दा आनंद देना चाहंदा है, पर पता नहीं पिंजरा ही ओदा जीवन बन जांदा है, ते कई बारी ओ स्वतंत्रता दवाण वाले पिंजरा तोड़न वाले नाल वी वैर कमान लग पैंदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुलामी दा पिंजरा तोड़ना चाहंदे ने, हजूर इन्हां नू आजाद कराना चाहंदे ने, पर गुलामी दे दिन कटण वाले लिख रहे ने कि गुरु गोबिंद सिंह आकी बन गए ने, ससा बड़े जतन कीते ने, उन्हां नू आपां रोक लईए पर साडी कोई पेश नहीं गई, पर जेकर बादशाह तू कोई उद्दम उपराला ना कीता ते गुरु गोबिंद सिंह बगावत दी अग पैदा कर दे। साध संगत हजूर आनंदपुर ने ते किन्ने बादशाह औरंगजेब ने सूबा सरहंद वजीर खां नू भी लिखे है कि तुसी आनंदपुर नू घेरा पाणा, उस तो इलावा लाहौर दे नवाब नू सूबेदार जबरदस्त खां नू भी पत्रका भेजीए कि तुसी अपनी फौज लै के आनंदपुर आ जाओ, सरहंद तो लाहौर तो दिल्ली तो भी फौज भेजीए, ते केवल ए ही नहीं बाई धार दे पहाड़ी राजियां विचों कुछ राजे भी नाल ने, जम्मू दा राजा भी उस घेरे विच आया है, ते इन्हां ने आके आनंदपुर नू घेरा पा लिया। मई 1704 विच ए घेरा पिया। गर्मी दे दिनां विच मैं संखेप जी अर्ज करके अगे तुरना वा, मई विच गर्मी दे दिनां विच घेरा पिया, कुछ समा जंग होई है, ते गुरु कलगी वाले सच्चे पिता जी ने अपने सूरमिया नू किले विच मुकर्र कर दिता वक वक थावां ते, हुण सतगुरु उच्ची पहाड़ी दे उपर ने, घेरा पाण वाले नीवियां थावां ते ने, उन्हां दे तीर ओनियां उन्हां दियां गोलियां तां किले विच ओनी मार नहीं करदियां जिन्नी मार गुरु कलगी वाले दे तीर ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे सिखां दी फौज दियां गोलियां मार कर जांदियां। इन्हां ने घेरा पाई रखिया पर हजूर ते इहदा कोई असर नहीं। कहिंदे ने कुछ महीने लंघ गए ने, अखीर ते ए तंग आ गए पहाड़ी राजे हाकमां दी फौज। इन्हां ने एक नवी सोच सोची, कहन लगे एक तरीका लभो, हुण लड़ो ना, लड़न विच साडा नुकसान ज्यादा हुंदा है, तुसी घेरा पा के आनंदपुर नू चार चुफेरे बैठ जाओ, ना ता अंदर कोई जान दियो, ना किसे नू बाहरों आउण दियो, ते जे कदो अंदरों कोई राशन लैण आए बाहर नू निकले ओनू भी कतल कर दियो, बाहरों किसे सिख नू आनंदपुर ना आउण दियो, ते घेरा इन्ना कु तंग कर दियो, जदो इन्हां कुल दाने पठे मुक जाणगे, जदो इन्हां कुल खाण वाला राशन खत्म हो जाएगा, ते इन्हां अपने आप ही बाहां खड़ियां करके अपने आप नू साडे सामने समर्पण कर दे। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता आनंदपुर दी धरती ते ने, इस तो पहला मेरे हजूर ने कवियां नू ते कुछ परिवार ऐसे ने, ज्ञानी सोहन सिंह शीतल लिखदे ने, हजूर ने कहा घेरा पैणा है, मुसीबतां दे पहाड़ टुटने ने, जिस किसे परिवार ने चले जाना आनंदपुर तो वह खुशी नाल जा सकदा है, पर कमाल दी गल कहिंदे ने कई परिवार आनंदपुर विचों चले गए, कवि चले गए, विद्वान चले गए, वड्डे वड्डे आलम जेड़े ने ओ चले गए, पर वाह मेरे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता घेरा पै गया, लोकां नू तुसी कह रहे हो अपने परिवार नू जे बचाना है ते तुसी जा सकदे हो, पर तेरे परिवार विच भी तां बुढ़ी माता है, तेरे परिवार दे अंदर भी छोटे साहबजादे ने, पर अपने परिवार का एक भी जी बाहर नहीं जान दिता, एदा मतलब इको सी किते लोग ए ना कहन कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना परिवार तो आनंदपुर तो बाहर भेज दिता, ते लोकां दे बच्चे दुश्मन दे सामने खड़े करके मौत दे मुंह विच पवा दिते। अपना परिवार गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर ही रखे है, ते कि सतगुरु अपने परिवार नू बाहर भेज नहीं सकदे, घेरा तंग हो गया, बाहरों कोई राशन आउंदा नहीं, ते अंदर कहिंदे ने राशन खत्म होण लगा है, इथों तक इसे घेरे दे अंदर ही ओ प्रसादी हाथी जेड़ा राजे रतन राय ने भेट कीता सी, भुख दे खुणों कलगी वाले दियां अखां दे सामने तड़प तड़प के ए प्रसादी हाथी दी मौत हो गई सी, इसे भुख दे अंदर ही मेरे

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लहिया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नूं आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नूं गुरमत नूं पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानूं जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वो गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक ये कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी, उन्हां दा विआह, उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच इक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथे है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना है, दान पुन करना है, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरते है, खैर तीर्थ इशनान, गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना। ते अज 20 वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इन्हे अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे। ते ओह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी, ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो इह बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज इह भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर, उहदी सरां दे अंदर उन्हां ने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कहन लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी उहदे घर तों बाहर निकल के उहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी ए। ए पंडित अपने घर तो बाहर निकलिया, बाग विच पए हुए यात्रियां दे कोलो लंघिया, ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने उसे वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरणा दे अंदर पद्म है ते इह गल ध्यान विच रखना, जां ते इह आउण वाले समें दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇਈ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸੋ ਜਿਹਾ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗੁਰੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
साहब कहते ने जो जन्म होया ना तो बचपन में एक आस है अजे कुछ दिन खेडन दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आनी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नू एक आस है कि पुत्र धियां वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना मेरे ते बुढ़ेपा आना है ते गुरु ग्रंथ साहब कहते ने उस बंदे नू मैं पुछ के देखा जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा ते पुछया सतगुरु तुसी दसो कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू तां परमेश्वर दी फसल है ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डटरी फसल ही ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है उदों तां सिर्फ इक्को ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है उन्हें इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की हुई फसल केवल कट्टी जांदी है पक्की तो बाद की करांगे। हजूर ने बाणी विच क्या हरी नाहे ना डडरी ए दरते जे हरी फसल नहीं कट्टी गई ते डडरी दी आस ना करी हो सकदा डडरी तो पहला कोई कट के लै जाए। हरी नाहे ना डडरी पक्की वड्डन हार लै लै दात पहोतिया लावे कर तैयार जा हुक्म होवा किरसान दा ता लुण मिणिया खितार जितन रब ने हुक्म कर दिता उदू बाद इस फसल नू वाढी जरूर पाएगी। बाबा अमरदास नू सिर्फ इन्नी कु गल ठोकर मार गई कि मना तू गुरु तो विछड़े है तू रब तो विछड़े है ते मैं कई बारी अर्ज करना हुना जदों ए महसूस अंदर हो जाए ना बाणी पढ़ने कि मैं रब तो विछड़िया वा मैं गुरु तो विछड़िया वा ते एक आस करियो कि परमार्थ का एक कदम आपा ने पट ले। दुनिया नू ता ए भी पता नहीं असी रब तो विछड़िया कि नहीं लोकां नू ता ए भी समझ नहीं मेरा गुरु की ते मैं गुरु तो विछड़िया वा। जिस बंदे नू एनी समझ पै जाए ठोकर वज के मैं अजे गुरु नाल नहीं जुड़िया जिस बंदे नू रोग का पता लग गया वो वैद नू भी जरूर लभेगा जिस बंदे नू ए ही पता नहीं मैं रोगी हाँ उन्हें वैद कोल जाके करना की। बाबे अमरदास नू एनी कु समझ पै गई तू प्रभु तो विछड़िया है ते गुरु कृपा करे हर बंदे नू ए समझ पै जाए। कबीर साहब ने बाणी विच पवित्र बचन कहा कहिंदे ने जदों शाम पैंदी है ना उन्हां ने उस वक्त दे समय नू मुख रख के बचन उचारिया कहिंदे ने शाम पैंदी है व्यापारी भी अपने टिकाणे ते रात नू आराम करदा है तुरन वाला राही भी किसे सराम विच रुक जांदा है जिमीदार भी शाम नू थक के घर आ के टिक जांदा है दुकानदार चाकरी करन वाले भी ज्यादातर रात नू घर आ टिकदे ने पर कबीर साहब कहिंदे ने रात नू सारे आराम करदे ने पर एक आवाज रात नू मेरे कन्नां विच गूंजदी है ते सोचना वा ए कौन है जिन्हू रात भी आराम नहीं ए रात भी उची उची पुकारदा है। ते कहिंदे ने जदों इस आवाज दी सेध नू मैं गया ते की देखिया एक चकवी बड़ी उची उची पुकारदी पई है पता नहीं कुदरत दा एक नेम है जदों शाम पैंदी है चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै जांदा है। विद्वान सज्जना ने बाणी विच इहदियां बड़ियां उदाहरणां ने दरियावां दे किनारियां ते पंछी रहिंदे ने जदों रात पैंदी है चकवी दरिया दे खब्बे नूं चली जांदी है चकवा सज्जे नूं चला जांदा है एक दूजे नूं पुकारदे ने पर हैरानगी दी बात एक दूजे दी आवाज सुन के एक दूजे नूं मिल जांदे ने मिलाप हुंदा इन्हां दा दरिया विच उड़निया खब्बा सज्जे नूं चला जांदा सज्जा खब्बे नूं चला जांदा है सारी रात चक्कर करते रहिंदे ने पर मिलाप हुंदा नहीं। बाबा कबीर कहिंदे ने मैं चकवी नूं देखिया रात उची उची पुकारे मैं कहा सबर नाल टिक जा सारी दुनिया आराम कर दी तेनू चैन नहीं ते चकवी ने कहा जिदा प्यारा विछड़ जाए उनू टिका ते चैन किथे
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਵੀ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਭਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਛੜਦੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਵਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕ ਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਚੱਕ ਈ ਜੋ ਨਿਸ ਬਿਛੜੈ ਨਿਸ ਦਰ ਤੇ ਰਾਤ ਚੱਕਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੀ ਏ ਆਏ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋ ਨਰ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਸਿਓ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੈ ਨਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਏ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨਗੁਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰਨਾ ਕਦੀ ਰੋ ਪੈਣਾ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੱਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ

दस्ते सर उन्हां दे नौ लक्षण ने जिहड़े प्रीतम तो विछड़े। बाबा अमरदास नूं तीन दिन हो गए ने टिकाओ नहीं, आवाज कन्नां विच गूंजदी तू नगुरै। अज तीजे दिन जदों अमृत वेला होया ते अपने बिलकुल भरा दी कंध विचों एक आवाज सुनाई दित्ती। नाल दे घर विच मदाणी पई, मदाणी नाल दुध रिड़कण दी आवाज सुनाई दित्ती ते उस मिठी आवाज मदाणी दी आवाज नाल मदाणी रिड़कण वाली उस बीबी दी आवाज शुरू होई। गला सुरीला सी, प्रेम विच भिज्जा सी। उदन मदाणी दी आवाज ते उदन आवाज आउण लगी, मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला तो लेख पए। ए शब्द दी आवाज कन्नां विच पई ते बाबे अमरदास नूं इंज प्रतीत होया जिवें किसे ने डिगे हुए नूं आसरा दे दिता है, जिवें किसे ने जख्म ते मलम ला दिती। ते कहिंदे ने बाबा अमरदास कंध दे नाल कन्न ला के सुन लगे ते बीबी शब्द पढ़ी जा रही सी, चित चेतस की नी बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। पढ़दी पई सी जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती। शब्द पढ़दिया पढ़दिया बीबी दे बोल इथे आ गए, काया आरन मन विच लोहा पंच अग्न चित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई। भया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिश्त सदेहा। जदो शब्द दा प्या भोग ते इस बाबे दिया अखा विचो नीर दी झड़ी लगी, कंध नू पार करके दरवाजे रही घर विच पहुंचया ते पिछो आवाज देख के कहन लगा, बचड़िए अज तू मेनू डिगे नू आसरा दिता है, मेनू ठठे नू सहारा दिता ही, मेरे जख्मां उत्ते तू मलम ला दिती, मेरे तड़प दे अंदर तू अमृत दे छत्ते मार दिते। ते जदों बीबी ने शब्द सुनिया बचड़िए ते तड़प के पिछे देखिया ते कौन है, ओदे सहुरे दा वड्डा भरा है बाबा अमरदास। ते कोल जाके कह लगे, धीए घबरा ना, देख मैं अजे तक नगुरा हूं, मेरा गुरु कोई नहीं, सट मार गया सी कोई, इलाज नहीं हूं दस के गया, चोट किसे ने मारी, इलाज तेरे शब्दां विचों नजर आया, तू दसेगी जो कुछ गाउंदी सै की सी। ते ओ बीबी कोई होर नहीं, गुरु अंगद साहब की सपुत्री है बीबी अमरो, जेड़ी बाबा अमरदास जी दे सके भतीजे नाल व्याई है। ते उस वक्त कहन लगी, पिता जी ए कोई आम गीत ते कविता नहीं, ए बाणी है मेरे गुरु नानक दी। ते मैं एक अर्ज करदिया सिर्फ एक खिन निकलन लगा, बाणी विच ते कविता विच बड़ा अंतर जे। कविता दी मियाद कोई दो चार साल हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कविता कोई छोटी चीज है, जेड़ा कविता रचदा ओदे ते भी रब की कृपा है, पर किसे लिखे हुए गीत नू तुसी एक साल दो साल लगातार पढ़ोगे, उस गीत नू तुसी गाए हुए नू दो चार साल सुनोगे, एक दिन कहोगे छड़ो ए गीत ता सुन सुन के कान भी थक गए ने, पर बाबा तेरी आसा की वार दी आवाज रावी दे किनारे करतारपुर तो शुरू हुई ते सदियां हो, पता नहीं किन्ने कु सिख जपजी पढ़ने वाले चले गए, किन्ने कु पढ़ते ने, किन्निया कु ने पढ़ना है, पर कभी किसे नहीं कहा कि रोज ही जपजी साहब, क्योंकि मेरा गुरु नित नवे, मेरे गुरु दी बाणी दी तस्वीर ऐसी है। कह लगे, बचिए ए है की? कह लगी, पिता जी ए मेरे गुरु नानक दी बाणी है। ते अगो बजुर्ग बाबे दिया अखां विचों अथरू इंज डिगे जिवें मानो चिट्टे मोती डिगदे ने। कह लगे, बचड़िए इस बाणी दे अर्थ करके दसेंगी, इहदे अर्थ की ने? ते बच्ची ने अर्थ शुरू कीते ते जदों इत्थे पहुंची ना काया आरण अर्थ कर दी, कह लगी, पिता जी गुरु नानक साहब कहिंदे ने काया आरण, साडा शरीर एक लोहार दी भट्ठी है जिहदे विच लोहा गर्म कीता जांदा, आरण दा अर्थ हुंदा है भट्ठी, मन विच लोहा ते साडा मन जिहड़ा उस भट्ठी विच लोहा बन के पिया है, शरीर लोहार दी भट्ठी है, मन लोहा है। ते पिता जी गुरु नानक साहब कहिंदे ने पंच अग्न ते तलाग रही, आ काम क्रोध लोह मोह दी हंकार दी पंजां वकारां दी अग लगी है, ते किसे बंदे दा मन विरले दा जिहड़ा साबित होवे, नहीं ते इस अग ने साड़ के खत्म कर दिता।

तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परनवत नानक तिनकी शरणा

नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दी पावन

जरूर लगेगी, अग मचन तो पहला पानी सड़ेगा। हुण एक लकड़ गिली लिया के तू 12 घंटे अग विच रखे, ओ 12 घंटिया विच नहीं फूकी जाएगी, नहीं अग छेती लगेगी। सुक्की लकड़ तू लियावे ते 10 मिंटा विच भड़क उठेगी, बस इना फर्क ही। कुछ मन ऐसे ने जेड़े कई जन्मां दियां वासनावां दा पानी लैके तुरे, सुकणगे ते अग लगेगी, किवें अग मच जाए कोदम। एक ऐसे ने जेड़े वासनावां दा पानी ला के तुरे ने, अंदर पहले ही निर्मल सी, मत्था टेकण दी देर सी, अंदर गुरु गुरु चल पिया। हुण गिली लकड़ सुकी लकड़ दा मुकाबला की करे? जे गिली लकड़े कह मैनू इन्ने दिन हो गए, अगले कहणगे दिनां दी गल नहीं, अपना अंदर देख, तेरे अंदर पानी ये सुका है, सुके अंदर भांबड़ मचेगा। देखो ये नहीं कि कोई बंदा अज आया इहदे ते किरपा किवें हो गई। भगत सदना जी ते मेहर होई, कर्म उन्हां माड़े कीते, समाज ने कहा नहीं, कल तक दा कसाई अज किवें भगत बन सकदा है। मैं अज बेनती करके आया गुरु लुधियाणे भी, मैं कहना अज कत्ते दे महीने विच संगत विच आ के ना भगत सदने दी तरह एक फरियाद करिए गुरु नानक दे चरणा विच। भगत जी ने रब नूं मुखातब करके बचन कह लगे, परमात्मा मैनूं एक गल तुसी समझाओ, पहला मैं कर्म माड़े करदा सां, लोग कहिंदे सन कसाई लेखा किथे देंगा, अज मैं जे भगती वाले पासे तुरिया ते लोग कहिंदे ने तू छुटेगा किवें, तेरे लेखे ही नहीं मुकने, मैनूं एक गल समझा जे, जे तेरी भगती करके भी कर्मां दा संगल पिया रहना फिर भगती दा लाभ की है। मैं दो बेनतियां कीतियां, कत्तक कर्म कमावने भी है, पर कत्तक हो वै साध संग बिन सह सब है सोच, जे संगत विच आवे ते कर्म दगद भी ने। उथे उन्होंने फिर बचन कीते ते उदाहरणा कैसिया दित्तियां, कहन लगे परमात्मा चल मेरे तू कर्मां नूं उस कामी दी तरह ही समझ लै। मैं कहना स्वाद आ गया अरदास करन दा रब दे चरणा विच, क्योंकि लकड़ां कड़न वाला एक सज्जन विष्णु दा रूप धारण करके राजे दी कन्या नूं छलन गया। रूप तां धारण कर लिया पर शक्ति नहीं, सिर मैं बाणी दे अर्थ कर रहा, इहनूं इह ना समझो किते मथियोलॉजी। कहन लगे भी रूप तां विष्णु दा बना लिया पर शक्ति नहीं, ते जदों उन्हां कहा शक्ति, फिर उस कामार्थी ने अरदास कीती, परमात्मा भेख बना लिया पर कर्म चंगे नहीं, रब जी तू उहनूं शक्ति दे दित्ती, जे कामियां नूं शक्ति दे के बना दित्ता ही कर्म नहीं, उह विचारे ते मैं तेरे चरणा विच आया की मेरे कर्म विचारेगा। ए शब्द आरंभ हुंदा नृप कन्या कै कारण एक भया भेख तारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पहज सवारी, कत्तक होवे साध संग, जे संगत करेगा ते कत्ते विच कर्म कट्टे जाणगे। नृप कन्या कै कारण एक भया भेख तारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पहज सवारी, तब गुण कहा जगत गुरा, हे जगत दे मालक वाहिगुरु जी तेरे केड़े गुण कहा, जो कर्म ना नाश है, जे साडे कर्मां दा नाश नहीं होना फिर तेरे नाम नूं उची उची पुकारन दा लाभ की। मैं कहना देखो भगती करे ते इहो जिहा रब नाल गल्लां ही करे, कर्म कांड ना करे। ओ सीधा जिवें बांह पकड़ के नहीं कहीदा मेरी इस गल दा जवाब दे। मैं कहना भगत सुरत टिका के पकड़ के चरण कहिंदा परमात्मा मैनूं पहला आ दस आ गल की है, ये गुंजल खुलेगी कि नहीं। तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नाश है, सिंह शरण कत जाइए, जो जंबुक ग्रस है, जंबुक दा अखरी अर्थ हुंदा गिद्दड़। कहिंदे ने जे शेर दे घुरने विच जाके भी गिद्दड़ दियां भभकियां तो डरना है फिर मैनूं दस शेर दी ताकत की हुंदी है। देखो समझियो, मैं कर्म कीते ने माड़े ते जे तेरा नाम लिया भी उन्हां कर्मां दा डर, खाए कर्म खाए कर्म, फिर मैनूं दस तेरी बख्शिश की होवेगी। तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नास है, सिंह शरण कत जाइए, जो जंबुक ग्रास है। अगली तुक है एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे, चात्रिक एक बूंद नू सहक दे ते गुरमत नगद धर्म है, गुरमत उधारा धर्म नहीं। फिर मेरी बेनती समझियो, गुरमत यह नहीं कहिंदी कि आ तू करना है अगले जहान जाके तेरा सब कुछ काम निबड़ेगा। गुरु कहिंदा तू कमाई करता सही, प्यारे मरण तो बाद मुक्ति नहीं, इस घर विच तां जिउंदे जी ही मुक्त हो जांदे ने। असी मरण तो बाद मुक्ति कित्थे क्या गुरु ग्रंथ साहिब विच मरण तो बाद मुक्ति? बाबा जी ने ते बाणी विच कह दिता, कहन लगे मुवे खोए जो मुक्त देहोगे
ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਂਦੇ।

लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरराज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकह टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

अपरंपर अलख अपेव दृष्ट तरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरराज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमें दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।